0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो
2: रांची।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी की धड़कन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: डीएस।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: FM. Radio DS. Radio DS. 89.6 पे Radio DS.
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे.
2: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक, एक विद्यार्थी 98% से अधिक, 7 विद्यार्थी 97% से अधिक, 28 विद्यार्थी 96% से अधिक, 53 विद्यार्थी 95% से अधिक, 76 विद्यार्थी 90% से अधिक, 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
4: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। डीएस साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।

0: गुड मॉर्निंग सुप्रभातम गंगापुर सिटी, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना,
1: मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।
0: दोस्तों आज रविवार है, रविवार का स्पेशल कार्यक्रम हेलो फरमाइश लाइव, कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते सर।
0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: चौधरी, निवेदन कर रहा हूँ श्री महावीर जी से।
2: चौधरी जी, क्या करते हैं आप?
1: रेडियो डीए सुनते हैं, हम कुछ नहीं करते।
2: अच्छा, काम और कुछ करते हैं रेडियो डीएस के अलावा?
1: और तो आपको मिस कॉल देता रहता हूँ सर।
2: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलो, हमारे आप एक तो ऐसे दीवाने हो जो कम से कम सारे दिन पूरे दिन हमारे रेडियो डीएस के कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
1: रेडियो बंद हो जाता है, मिस कॉल देता रहता हूँ।
2: चौधरी जी, एक चीज बात करते हैं अपन, जो आपके समय में और आज के दौर के बालकों में कितना अंतर देखने को मिलता है, कौन कौन सी चीजें डेवलप हुई है भारत में
1: नए बच्चों में
2: आपके उम्र में जो अंतर देखने को मिलता है?
1: अब ज्यादा अंतर तो ये सर, हम पढ़ाई पे ध्यान देते थे, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं।
2: तो पढ़ाई पे तो आज भी दे रहे हैं बच्चे, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है
1: वो सर? थोड़ा अंतर है। पहले जब हम जाते थे स्कूल
2: जी,
1: तो कभी कभी तो मतलब पिताजी ठोकर मार देते पीठ पे।
2: अच्छा,
1: पिता पढ़ने नहीं जा रहा है
2: वो? एक
1: जब पढ़ने जाता है ना बच्चा, जो गुड़ मैम गुड़ वाई जाने लंदन जा रहा है बच्चा।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा चौधरी जी, बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: अब गाना तो सुपरहिट लाए कारवा पिक्चर का है।
2: कौन सा है?
1: या तू अब तो आई।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपका आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना।

0: हेलो हेलो जी, नाम बताएं सर आपका।
1: शिवम।
0: शिवम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गाना
0: नहीं, बात कहाँ से कर रहे हैं?
1: आवाज नहीं आई सर। आप
0: गाना बता दो सर, गाना कौन सा चाहिए आपको?
1: क्या
0: गाना बता दो, गाना कौन सा सुनना है?

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: हाँ
1: जी, नाम बताए सर आपका।
2: दिलकुश
1: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: नसिया कॉलोनी
1: से। क्या करते हैं दिलकुश जी आप?
2: पढ़ाई करता हूँ।
1: कौन सी क्लास में?
2: नीट प्रोफेशन 12th में।
1: अच्छा, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
2: बैरन सॉन्ग।
1: बैरन बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो हेलो
2: सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो
3: राधे राधे।
2: राधे राधे, नाम बताएं सर।
3: मनोज बोल रहा हूँ, क्या हालचाल?
2: बस बढ़िया है मनोज जी, आप बताएं।
3: गणेश चौके हैं, गाना सुना दो। पर ये प्रसाद मत बांटना, पहले ही बता रहा हूँ, ढंग का सुना दो पूरा का पूरा।
2: क्या बात है सर। सर हेलो फरमाइश में तो आप लोगों की फरमाइश चलती है, फिर भी आपको शिकायत कैसे रेडियो डीएस से?
3: ऐसे है ना कि वो प्रसाद की तरह छोटा सा सुना के बंद कर देते यार, वो मजा नहीं आता।
2: अच्छा अच्छा। और सर और भी तो लिस्नर रहते हैं ना, आप जैसे भाई लोग और भी तो तरसते रहते हैं, अब कॉल इतनी आती रहती है। कहाँ घुमाई हो रही है मनोज जी अभी?
3: जयपुर जा रहा हूँ रस्ते में यार।
2: अच्छा, रस्ते में भी रेडियो डीएस का पीछा नहीं छोड़ रहे मतलब? बताएं कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
3: गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, यशोदास की आवाज।
2: रिमिक्स में नया कौन सा?
3: नहीं पुराना वाला। अच्छा, यशोदास अच्छा। की आवाज।
2: गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा।
3: हाँ
2: बिल्कुल, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ये बेहतरीन सा गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: हेलो
1: सर, नमस्ते।
2: जी नमस्ते मैम।
3: क्या नाम है सर आपका?
2: जी मेरा नाम है प्रियांश मीना।
3: प्रियांश जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं बात कर रहा हूँ मलाना डूंगर मानोली सवाई माधोपुर से।
3: क्या बात है प्रियांश जी, क्या करते हैं आप?
2: मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ।
3: कौन सी क्लास में?
2: टेंथ क्लास।
3: टेंथ क्लास में, बहुत अच्छी बात है। बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डीएस से आप?
2: आज मैं पुराना एक अच्छा सा गाना अक्षय कुमार का दिल तो पागल है।
3: दिल तो पागल है
2: जी,
3: बिल्कुल सुना रहे हैं प्रियांश जी आपको, आपकी वॉइस का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल क्या धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपका।

0: 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते। हाँ सर, मैंने जम्मू से केशव शर्मा जी।
3: सर केशव शर्मा जी, कैसा मौसम है जम्मू कश्मीर में फिलहाल?
2: आज सर ठीक है सर, कल बारिश हुई थी सुबह।
3: क्या बात है,
2: बिल्कुल साफ सुथरा और ठीक है, गर्मी थोड़ी कम है।
3: बढ़िया तफरी चल रही है फिर तो आपके ठंड की। इधर हम गर्म गंगापुर सिटी में बहुत गर्मी में बैठे हुए हैं।
2: कल सुबह बारिश हुई थी, अच्छा सर दोपहर को थोड़ी गर्मी हो जाए, अब ठीक है वैसे मौसम।
3: अच्छा अच्छा, अच्छा सर वहाँ जो अभी बरसात कितने दिन से चल रही है?
2: सर ये तकरीबन 25 जून के बाद ही शुरू होती है यहाँ।
3: अच्छा अच्छा,
2: 25 जून के बाद हो ही जाती है शुरू।
3: थोड़ा हमारे भी इधर भेजो सर गंगापुर सिटी में भी मौसम को।
2: अच्छा अच्छा।
3: बताएं कैसे जी, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
2: सर ये आज सुना दीजिए फिल्म दो दिलों का संगम का गाना है, मेरे प्यार में है वो दीवानगी।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं केशव जी आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सॉन्ग, इतनी दूर से आपने हमें कूल किया, बहुत बहुत धन्यवाद
2: सर। चलो आपका प्यार है, ये आपका प्यार हमें खींच लाता है, रोज आपसे मुलाकात हो जाती है फोन के जरिए।
3: चलो सुना रहे हैं सर आपका, आपका आपकी
2: जरूर आपके पास आएंगे राजस्थान, तो वैसे मैंने देखा है चक्कर चुक्कर लगाया है सर।
3: बिल्कुल आए सर, आपका स्वागत है
2: सर। कोई बात नहीं, देखेंगे भगवान ने चाहा तो जरूर मिलेंगे आप।
3: ओके जी,
2: ओके।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: हेलो नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
2: हम योगेश जांगले बोल रहे हैं, देने तरह छत्तीसगढ़।
3: योगेश जी, छत्तीसगढ़ का मौसम का हालचाल तो बताएं।
2: हाँ बढ़िया, अभी भी गर्मी है, उमस है, अभी तब तो बारिश नहीं हुआ है।
3: अभी तो जम्मू कश्मीर से केशव शर्मा जी बता रहे हैं, बहुत बारिश चल रही है उधर, उधर चलते हैं घूमने।
2: नहीं हमारे तरफ नहीं है अभी।
3: अच्छा, आज मौसम का क्या है ना सर, मैं माधोपुर जिले से हूँ, माधोपुर में बरसात आई है, गंगापुर में नहीं आई। तो वो कहते हैं ना कि राम तेरी कैसी माया, कहीं धूप कहीं छाया, वो वाला हाल चल रहा है।
2: वो तो पड़ोस के गांव में हो जाता है बारिश।
3: हाँ बिल्कुल
2: होता है, ऐसा रहता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या करते हैं योगेश जी आप?
2: खेती बाड़ी का ही हमारा मूल काम है।
3: अच्छा अच्छा, खेती बाड़ी में कौन कौन सी फसलें लगाते हैं आप जब वहाँ पे?
2: धान लगाएंगे बहुत आया।
3: अच्छा अच्छा, राजस्थान में तो सर बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली यही ज्यादा
2: हमारे तरफ कम होता है।
3: हाँ बिल्कुल, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मिट्टियाँ, विभिन्न जो वातावरण होता है उसी के हिसाब से फसलें भी। अच्छा बताएं, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल सुना रहा हूँ योगेश जी आपकी फरमाइश पर ये गाना। आपने इतनी दूर से हमें कूल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
2: हेलो
3: हेलो
2: मैम, नमस्ते।
3: नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैम।
2: गुड मॉर्निंग मैम, नाम क्या है आपका?
3: मैम सवाई माधोपुर से बोल रहे हैं, मोनिका।
4: मोनिका जी, क्या करते हैं आप?
3: सर जॉब करती हूँ लेकिन सैलरी नहीं मिलती सर मुझे।
4: ये तो बहुत गलत बात है मैम, आप भूख हड़ताल करें और सरकार तक अपनी बात को पहुँचाए।
3: सरकार से मैंने बात पहुँचाई सर, लेकिन सरकार कहते सब तुम्हारा ही तो है, तो सैलरी लेने की क्या जरूरत है?
4: जब आपका है सब कुछ तो फिर तो सैलरी मांगना ही बेकार है, आपका हक ही नहीं बनता उसमें तो। सैलरी पेड़ पे तो कर्मचारी काम कर सकते हैं।
3: कह रहे कि सब तुम्हारे नाम पे, तो सैलरी किस चीज की?
4: अच्छा मोनिका जी, आप एक बात बताएं, आज के जो छोटे छोटे बालक जो मोबाइल यूज करते हैं उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं?
3: देखो सर, नुकसान तो सबसे पहले जो बच्चे ना, मतलब आज के बच्चे सब चीज भूल चुके हैं। जैसे हम जैसे छोटे थे, किसी के आते ही हम पानी पकड़ाना या किसी के पैर छूना, अभी कोई भी आता है अगर जैसे छोटे बच्चे मोबाइल में लग रहे हैं तो वो लगे रहेंगे, सामने कौन है, रिलेशन में जाना पसंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा जाएंगे, मोबाइल हमको दे जाएंगे तो हम आराम से वीडियो देखेंगे। तो लेकिन ये सर हमारे ऊपर डिपेंड है, और एक तो हम मोबाइल में क्या दिखाते हैं बच्चों को ये भी हमारे ऊपर है कि हम ऐसी चीजें दिखाएं। जैसे मेरे भी दो छोटे बच्चे हैं, बेटी है, वो जैसे उनको मोबाइल में ऐसी स्टोरीज दिखाते हैं जिनमें मतलब कुछ उनको सीखने को मिलता है, जैसे महाभारत रामायण की स्टोरी आती है कार्टून में, तो वो चीज दिखाते हैं। तो मैं देखती हूँ कि वो मुझे पूछती है कि बड़ी माँ कुंभकर्ण कौन था, पता है आपको ये कौन था? मतलब ऐसी चीज दिखाओ, आप दिखा भी रहे हो मोबाइल को तो कोई दिक्कत नहीं है।
4: अच्छा कुंभकर्ण को फॉलो करते हैं आप, मतलब कुंभकर्ण अच्छा लगता है आपको, फॉलो करते हैं आप कुंभकर्ण जी को?
3: नहीं सर, मैं कुंभकर्ण को फॉलो करती हूँ लेकिन वो मुझे फॉलो नहीं करते, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती सर।
4: अच्छा नींद नहीं आती?
3: हाँ मैं उनको फॉलो करती हूँ बहुत, लेकिन वो मुझे फॉलो ही नहीं करते कुंभकर्ण जी।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अगरबत्ती वगैरह लगाया करो, कहा करोगी, थोड़े बहुत गुण आपके हमारे अंदर भी आए हैं और हम अच्छी चैन से नींद ले पाए। बताए मैम आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
3: सर गाना है सबकी बराते आई।
4: सबकी बराते आई, डोली लेके आना।
3: हाँ सर
4: बिल्कुल, सुना रहे हैं आपको आपकी फ्रॉइस का ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: हेलो
3: हेलो।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: नैतिक शर्मा।
2: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
3: पंजाब।
1: नैतिक जी पंजाब से बात कर रहे हैं। नैतिक जी बताएं, कैसा मौसम है पंजाब का?
3: सर मौसम तो बढ़िया है, धूप खुल रही है।
1: अच्छा बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज आप रेडियो डीएस से?
3: जाइए सजना।
1: जाइए सजना, बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कूल किया, धन्यवाद।
3: जी

0: दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: हेलो
1: सर, नमस्ते।
2: नमस्कार
1: सर, नाम क्या है आपका?
2: बाबू खान।
3: बाबू खान जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: गंगापुर सिटी।
3: गंगापुर सिटी से बाबू खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो डीएस में। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
2: मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बाहर आई।
3: हाँ, एक बात पूछूं सर आपसे, आपके समय से लेकर अब तक आपने कौन कौन से परिवर्तन देखे विज्ञान के? थोड़ी सी आवाज अटक के आ रही है सर। चलो सर, अभी फिलहाल गाना सुनाता हूँ, फिर बाद में कॉल करना, बाद में बात करते हैं।
4: तेरे दम से

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग मैम।
3: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग सर।
3: क्या नाम है आपका?
2: टीना सोलंकी।
3: सोलंकी जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
2: फोर्थ
3: क्लास में।
2: हाँ।
3: मोबाइल कितना देखते हैं?
2: हेलो। मोबाइल देखते नहीं।
3: देखते नहीं हो बिल्कुल?
2: भैया का देखते हैं।
3: नहीं, आप देखते हैं कि नहीं देखते ये बताएं मेरे को।
2: देखते।
3: थोड़ा थोड़ा देखते हो, ज्यादा देखते हो?
2: थोड़ा थोड़ा ही
3: देखते। थोड़ा। ऐसे डर के बात मत करो, घर वाले है क्या आसपास?
2: हाँ है।
3: हाँ, इसीलिए डर के बात कर रहे हैं आप। अच्छा, मोबाइल देखना अच्छी बात है या बुरी बात है?
2: बुरी बात है।
3: बुरी बात है, पर फिर भी देखेंगे तो सही ना। अच्छा, कौन कौन से नुकसान है बता सकते हैं आप मेरे को?
2: कोई नुकसान नहीं
3: है। अच्छा, कोई नुकसान भी नहीं है। चलो बताओ, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
2: मुझको रहना थी माफ करना।
3: हाँ, मोबाइल नहीं चलाएंगे हम अब।
2: हाँ
3: ठीक है, सुना रहे हैं सोलंकी जी आपका, आपकी फ्रॉइस का बेहतरीन सा गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम विक्रम है।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? रीको से।
2: विक्रम क्या करते हैं आप?
1: अरे भाई साहब, हम तो क्या डीएस में पढ़ते हैं, 11th।
2: अच्छा, 11th क्लास में पढ़ते हो क्या?
1: हाँ, डीएस में। वो क्या सुन रहे ना, तो उसमें क्या गाने सुन रहे थे हमने।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, गाँव कौन सा है आपका?
1: रोम में चला दो सर। मैं कहा आपको, मैंने रोज ना फोन करता था ना, उठाते नहीं आप। इसमें कि आज संडे करें।
2: हाँ, संडे के दिन जरूर उठाएंगे। गांव कौन सा आपका?
1: रोम ही हो।
2: नहीं, गांव कौन सा है? गांव
1: गांव मेरा बालोती बड़ा है। मेरा गांव बालोती है ना।
2: हाँ, अच्छा अच्छा, बालोती के बगल में गांव है। चलो, रोमियो गाना सुनाना है आपको, आ जाए।
1: हाँ।
2: अच्छा, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं आप?
1: बायो से कर रहे हैं।
2: बायो से कर रहे हैं।
1: हाँ।
2: अच्छा, बायो से पढ़ाई करके आगे क्या बनने का सपना है आपका?
1: डॉक्टर बनने का सपना।
2: अच्छा अच्छा, तो आप फाउंडेशन भी पढ़ रहे हैं अभी?
1: फाउंडेशन पढ़ रहे हैं।
2: बहुत अच्छी बात है, और बनेंगे आप डॉक्टर। और गानों के साथ साथ मेहनत भी इतनी करो पढ़ाई में कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति 100% हो जाए।
1: यस सर, यस सर।
2: ओके ओके।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: सर वो वाला सुदेश मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: नरूदा पीजी।
2: सुदेश क्या करते हैं आप?
1: पढ़ाई करते हैं सर।
2: कौन सी क्लास में?
1: सर 12th।
2: अच्छा 12th क्लास में पढ़ते हैं आप?
1: यस सर।
2: किस सब्जेक्ट से हैं आप?
1: मैथ।
2: मैथ से?
1: यस सर।
2: क्या सपना है आगे चलकर आपका? अच्छा कौन से स्कूल में पढ़ते हैं?
1: केतम।
2: अच्छा बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: आराम बाबा मुझे तुझ पे भरोसा है।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना।

दोस्तों 10:38 का समय हो चुका है। इस वक्त गंगापुर सिटी का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। आप सभी लिसनर से विशेष अनुरोध है कि आप केवल हमें फिल्मी गानों के लिए ही कॉल करें। हमारे स्टूडियो के नंबर आप सभी को पता है, नहीं है तो बिल्कुल लिखिए और डायल कीजिए 6378024475। दोस्तों नंबर एक बार पुनः सुने 6378024475। दोस्तों केवल एक ही बार कॉल करें और अनाउंस गानों के लिए हमें कॉल ना करें, केवल फिल्मी गानों के लिए करें।

0: बातें चलती हैं।
1: हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी।
3: गुलशन, क्या करते हैं आप?
2: हम चूड़े लगाते हैं।
3: अच्छा, चूड़ों को काम करती है आप?
2: हाँ।
3: अच्छा, कहीं दूसरी जगह जाते हैं काम करने या घर पे ही करते हैं आप? खुद का काम है?
2: नहीं, घर पे करते हैं।
3: अच्छा, घर पे ही करते हैं। बताएं, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
2: बन के तितली में दिखली।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं आपके फरमाइश का बेहतरीन सा गाना।
2: हाँ।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: पवन,
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से। देखो
2: पवन, क्या करते हैं आप?
1: पढ़ाई करते हैं।
2: कौन सी क्लास में?
1: 11th में।
2: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: आप धुरंधर मूवी का कोई चल गाना चला।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।

0: हेलो
1: जी मैम।
0: सर नमस्ते
1: जी, बोलिए।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: जी मलिक जी बोल रहा हूँ, मैं तो सिटी से।
2: मलिक जी गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर।
2: क्या करते हैं मलिक जी आप?
1: जी मैं सिंगिंग करता हूँ।
2: अच्छा, थोड़ा सा गुनगुना के बताएं सर, कौन सा गाना फेवरेट है आपका?
1: जी बड़ी मुश्किल है खोया मेरे दिल है।
2: अच्छा, बिल्कुल सुना रहे हैं सर।
1: थैंक यू सर।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ मैम।
1: सर नमस्ते।
0: नमस्ते
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: आर्यन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
2: आर्यन क्या करते हैं आप?
0: पढ़ाई।
2: कौन सी क्लास में?
0: 12।
2: गांव कौन सा आपका?
0: बाटोदा।
2: बाटोदा बरनाला।
0: हाँ।
2: कौन सा गाना सुनना है सर आज आपको?
0: तुझे याद है ना मेरी आई।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: आप पांचवी क्लास में पढ़ते हैं, मोबाइल के दो नुकसान कौन कौन से होते हैं?
1: एक तो आंख खराब हो जाती है।
0: एक तो आंख खराब होती है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप।
1: और नहीं पता।
0: चलो अगली बार जब भी कॉल करें तो याद करके रहे आप। आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जाट गल्ला यार।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी फ्रॉइस का बेहतरीन सा गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर, नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: अरविंद।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: करौली।
2: अरविंद जी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: कमली सॉन्ग।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है मैम आपका?
1: तोशी वर्मा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
2: तोशी जी, क्या करते हैं आप?
1: पढ़ाई।
2: कौन सी क्लास में?
1: नाइन्थ।
2: नाइन्थ क्लास में? बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज रेडियो डी से?
1: सदन दाजी हो जुबे।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का गाना।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: तनु।
0: कहाँ से बात कर रहे हो तनु जी?
1: गंगापुर सिटी।
2: क्या करते हैं आप?
1: मैं कुछ नहीं, मैं तो स्कूल जाती हूँ।
2: स्कूल? कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं गर्ल्स स्कूल में।
2: अच्छा, गर्ल्स स्कूल में। कौन सी क्लास में?
1: एट।
2: आठवीं क्लास में?
1: हाँ।
2: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: गुस्ताख दिल तेरे लिए बेताब है ए जाने जा।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
2: गुस्ताख दिल?
1: हाँ।
2: गुस्ताख दिल आगे?
1: तेरे लिए बेताब है ए जाने जा।
2: तेरे लिए बेताब है ए जाने जा।
1: हाँ
2: बिल्कुल, सुना रहे हैं आपको आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर, नमस्ते।
1: नमस्ते, जय श्री कृष्णा।
0: जय श्री कृष्णा। सर, नाम क्या है आपका?
1: विजय शर्मा सर।
2: विजय शर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: महू कला गंगापुर सिटी से।
2: क्या करते हैं विजय जी आप?
1: क्या करते हैं?
2: हाँ सर,
1: क्या बताऊं सर,
2: जो भी करते हैं बता दीजिए सर।
1: सर पत्रकार हूँ सर।
2: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। एक देश की सर्वोच्च जो कार्यशैली में से वो काम कर रहे हैं आप, और कहने में संकोच कर रहे हैं, बताएं। आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डी से?
1: कल भी मन अकेला था, आज भी मन अकेला।
2: क्यों भाभी जी कहाँ गई सर? हेलो,
1: हाँ जी,
2: भाभी जी नहीं है घर पे?
1: नहीं है ना, क्यों नहीं है?
2: तो मन अकेला कैसे रहा, दोनों जने तो हो साथ में।
1: बिल्कुल सही है आपका, लेकिन मन दो प्रकार का होता है ना सर।
2: अच्छा सर, बता दें सर हमको भी और हमारे सभी सुनने वालों को भी।
1: एक तो मन ये है कि आपसे बातचीत चल रही है मेरी,
2: बिल्कुल,
1: और दूसरा ये है कि कुछ संगीत हो जाए।
2: अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुना रहा हूँ सर आपको आपकी फ्रॉइस का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में आपने कूल किया, धन्यवाद।
1: ओके सर, ओके।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते
1: सर, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी मऊतला।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: बेवफा निकली है तू।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर यह गाना।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल।
1: कोमल जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
0: सिंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: नैना नू की हो गया।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: लतीफ अहमद रीना, कश्मीर से।
2: कश्मीर से बात कर रहे हैं सर, कश्मीर का मौसम का हालचाल तो बता दीजिए थोड़ा सा।
1: आजकल तो मौसम ठीक ही है, लगभग आज यहाँ धूप है, कल यहाँ पे थोड़ा मौसम बारिश ही था तो आज यहाँ पे धूप है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, अभी खेती बाड़ी में क्या काम चल रहा है सर आपके वहाँ?
1: आज यहाँ खेती बाड़ी में धान और मक्का लगाए।
2: अच्छा, मक्का भी इसी समय लगाते हैं आप भी?
1: नहीं, इसी समय नहीं लगाते सर,
2: है
1: वो अप्रैल में लगाते हैं।
2: अप्रैल में लगा देते मक्का?
1: हाँ अप्रैल में।
2: क्या बात है सर, हमारे यहाँ तो अब लगाएंगे, हम पीछे रह गए यानी।
1: हाँ सही बात, वहाँ तो गर्मी की मौसम है ना सर, उसी वजह से आप जून में लगाते हैं, वहाँ कभी जुलाई में।
2: बिल्कुल बिल्कुल। बताए सर, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम।
2: बिल्कुल, सुना रहे हैं सर हम आपको, आपकी फ्रॉइस का गाना।
1: धन्यवाद,
2: वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अंश कुमार माली।
2: क्या नाम है?
1: अंश कुमार माली।
2: अंश कुमार माली कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
1: प्रेप।
2: प्रेप में पढ़ते हैं। कितने साल के हो आप?
1: छह
2: साल के। अच्छा, एक बात बताएं मेरे को, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: बैपन रखी गाड़ी में शरियार के गुंडा कर दी है।
2: क्या बात है यार, गाना समझ में नहीं आया, थोड़ा सा गाना धीरे धीरे गाओ।

0: हाँ
1: सर नमस्ते, नाम क्या है आपका?
0: पवन।
2: पवन जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: कॉलोनी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज आप?
0: वो गाना चला दो, एसी को बिल ज्यादा चे।
2: एसी को बिल ज्यादा चे?
0: हाँ।
2: फिल्मी गाना सुनो सर, ये तो मीणा सॉन्ग हो जाएगा।
0: सर ये चला दो, दो तीन मिनट बाद में खा देने, एक सॉन्ग चला दो सर। वैसे
2: है
0: एक सॉन्ग चला दो, बस ये दो तीन मिनट तक फिर रखा देना।
2: अरे यार ये चल नहीं पाएगा ना, फिल्मी गाना बताओ।
0: एक चला दो, एक सॉन्ग चला दो। ये
2: ऐसा ही क्या, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: हम कॉलोनी।
2: ना गांव बताओ आपका, गांव कौन सा है?
0: गांव यही गंगापुर सिटी।
2: अच्छा अच्छा चलो ठीक है।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: सर नाम क्या है आपका?
1: आसाराम जागा मैम।
0: कहाँ से बात कर रहे हो आसाराम जी?
1: गंगापुर सिटी अम्बेडकर धर्मशाला के पास से।
2: बताए आसाराम जी कौन सा गाना सुनना है?
1: जरा देर ठहरो राम।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: माही खान।
0: कहाँ से बात कर रहे हो माही खान जी? कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: कभी ऐसा भी हो।
0: ओके मैम, सुना रही हूँ आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो मैम।
1: हाँ जी सर, नमस्ते।
0: हाँ गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मैम मेरा नाम है सलमानी
1: जी। कहाँ से बात कर रहे सर?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
0: आज गाना सुनना चाहते हैं मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, ये दिल के रहा है कसम से कसम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो टीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम जी।
1: यू वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मोहित।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: सिंगापुर की।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: पतली पतली कमर।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: शहर का नया मैजिक। रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो हेलो।
2: हाँ मैम।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: डांसिंग वाली।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
2: नकिया कॉलोनी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: तेरी गली से घर छोड़ दिया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कहाँ से बात कर रहे हो मैडम?
1: कानपुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी? कौन सा?
1: भाभी सॉन्ग।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी।
0: हाँ जी सर, नमस्ते।
1: नमस्ते
0: सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम मेरा दिनेश सैनी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: गाना पलपन नमाने तिल को दिया।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर नमस्ते
1: नमस्ते
0: सर, नाम क्या है आपका?
1: मोहित।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: हाई कोर्ट की वकील मालिक है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ मैम।
0: सर नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: सर नाम क्या है आपका?
1: अंकित मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सैनी कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: साहिबा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: दोस्तों, वक्त हो चुका है 11:33 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों, हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: मजबूर।
1: मजबूर?
0: यस।
1: ओके, तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी 90% से अधिक 110 विद्यार्थी 85% से अधिक 251 विद्यार्थी 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र. एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं. अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की. एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम. डीएस साइंस एकेडमी, एफसीआई गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी. संपर्क करें 8005598377. इसके अलावा 9983413111.
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर. गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6.
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे.
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6.

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों, हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378 0।
3: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है। 10th बोर्ड 2027 में 95%

0: प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक, फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हेलो।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: हिमांशु गुजर।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: नशिया कॉलोनी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: दादा नौरी वाला का अप टू अप।
3: कौन सा?
2: दादा नौरी वाला का।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: अपना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: लक्षिता वर्मा मैम।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सिंधी कॉलोनी गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैम मैं सुन चाहूंगी छम छम करती गली में जब निकली।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: बाबुद्दीन।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ये मैं नसीब फिल्म का सॉन्ग सुनना चाहता हूँ।
1: गाने के बोल
0: क्या?
1: गाने के बोल

0: करिएगा। हेलो
1: हेलो मैडम,
0: नाम क्या है आपका?
1: नाम है सोहन सैफी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: जी राजकुल ने गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: जी मैडम आज गाना सुन रहे हैं, कितने दिनों के बाद है आई सजना।
0: ओके सर सुना करिएगा।

0: बात बोलूं? शादी के जोड़े में तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। जी चाहता है कि तुम्हारे एक एक अंग को अपने प्यार के जेवर से सजा दूं, दुल्हन की तरह।
1: दुल्हन का सबसे बड़ा जेवर उसकी मांग का सिंदूर होता है, और देखो ना, वही नहीं है मेरे पास।

0: हेलो
1: हेलो मैम।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अंकित मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दीवाने हम नहीं होते।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE एंड CBSE एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27 लिमिटेड सीट्स।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
6: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी।
7: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
8: यार
9: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
10: मीना।
9: कहाँ से बात कर रहे हो?
10: मैं बरदाला गांव।
9: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
10: बापूजी मैंने माफ कर दो।
9: बापूजी मैंने माफ कर दो।
10: हाँ
9: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।
11: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग
12: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
3: हेलो,
4: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: भारती पंडित।
4: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: गंगापुर सिटी सैनिक कॉलोनी।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: मासूम शर्मा का 1800 शूटर।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
5: तागीर है, कितने छोटे छोटे बालक हैं, इनकी क्या मजबूरी रही होगी?
6: भाई इनकी कोई मजबूरी ना है, इनकी पूरी रैकेट चल रही है।
5: अच्छा,

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: सालू।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: सिंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जिंदगी में तुझी से बताऊंगी मैं, तो मर गई तुझको चाहूंगी।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपके सर में, सर ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
3: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
4: सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।
5: डीएस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस। डीएस साइंस एकेडमी,

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कृष्णा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी।
1: सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: वे टू फ्रॉम होम।
1: कौन सा?
0: वे टू फ्रॉम होम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो।
2: अरे आप गाना ही नहीं चला रहे।
1: हेलो।
0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
0: मनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: अमित सैनी रोड तक किया का संजय दत्त।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
3: एसटीएफ डिपार्टमेंट।
4: आज सारा हिसाब किताब क्लियर होगा मैडम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप इस वक्त मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो एस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसे मिला। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ आप अभी सुन रहे थे हल्लू फरमा इस कार्यक्रम। दोस्तों हेलो फरमाइश कार्यक्रम से लेते हैं विदाई, लेकर चलते हैं आपके मन पसंद और फेवरेट कार्यक्रम नए इतराने के अंतर्गत।

0: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस, रेडियो डीएस 89.6
1: पे रेडियो डीएस सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
4: दोस्तों 1:01 का समय हो चुका है, चलिए शुरू करते हैं आपके सफरनामे को और सुनते हैं छोटी सी बातचीत निशा शर्मा जी की।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
5: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में आए हैं निशा शर्मा जी एक मेहमान के रूप। निशा शर्मा जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
6: नमस्ते सर।
4: निशा जी सबसे पहले तो हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपका परिचय जरूर बताएं।
6: हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशा शर्मा है, मैं गंगापुर सिटी से बिलोंग करती हूँ।
4: निशा जी आपने एजुकेशन में क्या कर रखा?
6: जी सर, मैंने एमए पीजीडी से एमसीए किया हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अनुभव 10 साल का है।
4: क्या बात है। अच्छा अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप?
6: जी मैं बचपन पब्लिक स्कूल है अपना, उसमें मैनेजमेंट में हूँ।
4: अच्छा मैनेजमेंट में कौन कौन से कार्य देखने होते हैं आप?
6: जी सर, उसमें बच्चों का पूरा देखरेख की जाती है, काफी सारे वर्क होते हैं।
4: अच्छा आज हम आपके जो प्यारे प्यारे लिसनर हैं, हमारे जो राजस्थान और राजस्थान के अलावा सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी मतलब सारे क्षेत्र में सुने जाएंगे, तो इसके लिए हम बहुत सारे पारिवारिक जो गतिविधियां हैं उनका संचालन और उन चीजों का कार्यक्रम की देखरेख के माध्यम से चलते हैं। तो आज सबसे पहले आप हमारे जो श्रोता है उनको बताएं गर्मी के मौसम में एक महिला की जो परिवार में देखरेख होती है वो कैसे रखें और परिवार स्वस्थ बना रहे।
6: वैसे तो सर काफी सारी चीजें होती हैं जो महिलाएं गर्मी में अपने परिवार का किस तरीके से ध्यान रखती है
4: जी,
6: बट मैं कुछ टिप्स आपको या दोस्तों को बताना चाहती हूँ जो मुझे सुन पा रहे हैं
4: जी।
6: फर्स्ट तो हमें घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
4: बिल्कुल,
6: क्योंकि गर्मी में धूल गंदगी और कीटाणु तेजी से फैलते हैं
4: जी,
6: इसलिए घर की नियमित सफाई करें
4: जी।
6: रसोई घर में पानी रखने के बर्तन और शौचालय को विशेष रूप से हमको साफ रखना चाहिए।
4: बिल्कुल, शुद्धता है वहाँ देवता भी वास करते हैं।
6: जी सर, जी सर। घर में पर्याप्त हवा और रोशनी आने की व्यवस्था की जाए।
4: बिल्कुल।
6: दूसरा, हमको स्वस्थ और शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए, जो स्वच्छ पानी होता है हमारा।
4: बिल्कुल, तभी तन मन स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल
6: जी सर, बिल्कुल। गर्मी में शरीर को अधिक पानी की आवश्यकता होती है गर्मी में।
4: बिल्कुल, सभी सदस्यों को हमारे द्वारा बड़े बुजुर्ग चाहे बच्चे हों उनको पानी की भरपूर मात्रा दें।
6: जी सर, परिवार के सभी सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पीने के लिए प्रेरित करना चाहिए महिलाओं को।
4: बिल्कुल,
6: और पानी को हमेशा ढककर रखें, संभव हो तो उबाल कर या उसको फिल्टर करके यूज में लेना।
4: बिल्कुल, पानी से बहुत सारी बीमारियां भी होती है, तो अगर पानी जैसा आप बता रहे हैं अगर ऐसा पिया जाए एक बीमारी से भी बचा जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे जैसे पेट की प्रॉब्लम या बड़े बुजुर्ग पानी कम पीते हैं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो पर्याप्त मात्रा में सभी मेरे श्रोताओं को ये अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए।
6: जी सर, पौष्टिक भोजन हमेशा तैयार रखें
4: जी।
6: गर्मी के मौसम में हल्का और हमको पौष्टिक भोजन लेना चाहिए।
4: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखो खाना समय समय पर, और एक चीज मैं बताऊंगा निशा जी हमारे सुनने वाले श्रोताओं को कि जब भी हम धूप में निकले उससे पहले खाना खा के निकले बाहर, यानी 10 या 11 बजे से पहले पहले गर्मियों में तो काम कर लेना चाहिए बाजार का, और 11 बजे बाद तो निकलना नहीं चाहिए, और यदि ज्यादा जरूरी हो तो गमछा स्कार्फ आदि लगा के करके निकले।
6: जी सर, गर्मी में सबसे ज्यादा हमको दही या छाछ, सलाद और अंकुरित अनाज को उपयोग में लेना चाहिए।
4: बिल्कुल, बहुत
6: तला अच्छा। और भुना मसालेदार भोजन हमको कम उपयोग में लेना चाहिए।
4: बिल्कुल सही बात है। देखो मसालेदार, अगर ज्यादा मसाले खाएंगे तो गर्मी में हमारी बॉडी को दिक्कत हो सकती है।
6: जी सर,
4: इसलिए जितना हो सके छाछ, दूध और भोजन में हम खरबूजे, तरबूज, नारियल पानी और जो भी फल फ्रूट ले सकते हैं।
6: भोजन को हमेशा सुरक्षित रखें, क्योंकि गर्मी में भोजन जल्दी खराब हो जाता है।
4: अच्छा अच्छा।
6: बचा हुआ भोजन को हमेशा ढककर रखें, समय पर उसका उपयोग करें। खराब या बासी भोजन खाने से हमको फूड पॉइजनिंग हो सकती है।
4: बिल्कुल सही बात है। तो भोजन को हम कोशिश यही करें, परिवार के सभी सदस्यों को सुबह, शाम या दोपहर का जब भी लेते हैं तो ताजा भोजन बनाते समय ही खा लेना चाहिए।
6: जी सर बिल्कुल। दोस्तों, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए गर्मी के मौसम में।
4: बिल्कुल सही बात है। छोटे छोटे बच्चे तो टाइमिंग नहीं जानते कि कब पानी पीना है, कब खाना खाना है, तो उनको तो महिला ही बताएगी ना कि कौन से समय पर उनको भोजन देना है। और देखो, महिला जो एक परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है, महिला चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, उनको महिलाएं चलाती है, जबी तो महिलाओं को गृह मंत्री कहा जाता है।
6: जी सर बिल्कुल।
4: अच्छा, और कौन से टिप्स हैं?
6: जी सर, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। दिन में कम से कम एक बार स्नान करें।
4: जी।
6: हमेशा हाथों को साबुन से धोने की आदत डालें।
4: बिल्कुल, बहुत
6: विशेषकर भोजन बनाने और खाने से पहले, ताकि कोई भी कीटाणु हमारे अंदर ना जाए।
4: बिल्कुल सही है। कीटाणु अगर आएंगे तो हमारे जो शरीर की एक्टिविटीज है उनमें जाएंगे और हमें बीमार या रोगाणु ग्रस्त कर देंगे।
6: जी बिल्कुल। हीट स्ट्रोक से बचाव, दोपहर के समय तेज धूप से बाहर जब भी हम निकलते हैं, यदि बाहर जाना हो तो हमको छाता या टोपी या गमछे का उपयोग हमेशा करना चाहिए।
4: बिल्कुल निशा जी, बिल्कुल सही बात बताई आपने। जब भी हमको बाहर निकलना होता है तो हम सबसे पहले हमारी जो तेज धूप होती है या लू के जो थपेड़े होते हैं, इनसे सुरक्षा करना बहुत ही जरूरी होता है और हमें करना भी चाहिए। कभी भी हम कूलर की ठंडी हवा में या एसी की हवा में बैठे हैं तो तुरंत धूप में नहीं निकलना।

0: दीजिए, नहीं तो चक्कर आने की प्रबल समस्या रहती है। और कोशिश यही करें कि हम ज्यादा से ज्यादा छाया में चलें, छाया में काम करें।
1: जी सर बिल्कुल, नींबू पानी समय समय पर लेते रहें, नारियल पानी जैसे भी हमारे पेय पदार्थ हैं उनका उपयोग हमको ज्यादा करना चाहिए,
0: बिल्कुल सही,
1: ताकि हमारा शरीर हमेशा ठंडक प्रदान करे।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे नियमित श्रोताओं को दी निशा जी, आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर धन्यवाद।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 99.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुशी अग्रवाल। आज आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 पर हमारा विशेष कार्यक्रम महिलाओं के अधिकार। भारत के संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड राज्य के नीति निर्देशक तथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं का पहला मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत यह अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमें बताया गया है। इसके अंतर्गत भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में महिला और पुरुष दोनों समान हैं। हमारे अगले अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल लिंग, जाति, धर्म, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15(3). यह एक विशेष प्रावधान है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष कानून या सकारात्मक कदम उठाने की अनुमति देता है, जैसे महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा या नौकरियां, संसद में आरक्षण। महिलाओं के लिए अगला अधिकार है रोजगार में समानता, इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट।

क्षेत्र 16 अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों या रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। किसी भी महिला को केवल उसके लिंग के आधार पर अपात्र नहीं माना जा सकता। हमारा अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध और जीवन का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड लाइफ, अनुच्छेद 21 सम्मान से जीने का अधिकार। यह हर नागरिक को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। न्यायालयों के अनुसार इसमें महिलाओं को गरिमा और सम्मान के साथ जीने, गोपनीयता, प्राइवेसी और सुरक्षा माहौल का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर रोक, यह अनुच्छेद महिलाओं और बच्चियों की खरीद वक्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किसी भी प्रकार के जबरन श्रम या वेश्यावृत्ति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा अगला अधिकार है राज्य के नीति निर्देशक तक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये वो दिशा निर्देश है जिन्हें सरकार को नीतियाँ और कानून बनाते समय लागू करना होता है। अनुच्छेद 39A राज्य अपनी नीतियाँ इस प्रकार बनाएगा जिससे पुरुष और महिला दोनों नागरिकों को आजीविका, लाइवलीहुड के पर्याप्त साधन समान रूप से मिल सके। अनुच्छेद 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुषों और महिलाओं दोनों को एक जैसे काम करने के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ। सरकार कार्यस्थलों पर काम करने के लिए मानवीय अनुकूल माहौल तैयार करेगी और कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व राहत, मैटरनिटी बेनिफिट लीव का प्रावधान करेगी। हमारा अगला अधिकार है राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिक राइट्स। अनुच्छेद 243D और 243T पंचायतों और नगर पालिकाओं में आरक्षण, स्थानीय निकायों महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कम से कम 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिक राइट्स। इन संवैधानिक अधिकारों को जमीन पर लागू करने के लिए सरकार ने समय समय पर कई कड़े कानून भी बनाए हैं, जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम पॉश 2013 और मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी लीव एक्ट। थैंक यू।

0: दोस्तों इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: दोस्तों इस वक्त आप टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: नमस्कार गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं श्रेया भारद्वाज गंगापुर सिटी से आप सभी का स्वागत है हमारी रेडियो डीएस 89.6 पर। हमारा विशेष कार्यक्रम रोजगार और महिला सशक्तिकरण, बदलते भारत की नई तस्वीर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो महिलाओं के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और देश की आर्थिक प्रगति से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है महिला उद्यमिता और रोजगार। दोस्तों, आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। वे केवल परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभा रही बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रोजगार और व्यवसाय महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ आत्म सम्मान भी देता है। आत्मनिर्भर महिला, मजबूत परिवार। जब महिला रोजगार से जुड़ती है तो वह परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है। वह अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को बेहतर बना सकती है। आर्थिक रूप से मजबूत महिला परिवार में निर्णय लेने में भी आत्मविश्वास महसूस करती है। रोजगार के बदलते अवसर। आज महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पहले से कई अधिक बढ़ गए हैं। ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, शिक्षण बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और छोटे उद्योगों में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। छोटे व्यवसाय से बड़ी सफलता। कई महिलाएं छोटे स्तर से व्यवसाय शुरू करती है और धीरे धीरे बड़ी सफलता हासिल करती है। घर से शुरू किया गया छोटा काम भी मेहनत और सही योजना से बड़ा व्यवसाय बन सकता है। कौशल विकास की आवश्यकता। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास बहुत जरूरी है। यदि महिलाओं को सही प्रशिक्षण मिले तो वे आत्मनिर्भर बन सकती है। कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्र महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं की सफलता। गाँव में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। वे बचत कर रही है, छोटे व्यवसाय चला रही है और अपने परिवार की आय बढ़ा रही है। यह बदलाव ग्रामीण समाज को नई दिशा दे रहा है। चुनौतियाँ और संघर्ष। महिलाओं को रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार समाज की सोच, संसाधनों की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके रास्ते में बाधा बनती है, लेकिन मेहनत और आत्मविश्वास से महिलाएं इन चुनौतियों को पार कर रही है। तकनीक से बढ़ती संभावनाएं। आज इंटरनेट ने महिलाओं के लिए दुनिया के नए दरवाजे खोल दिए हैं। महिलाएं सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। महिलाओं को वित्तीय ज्ञान जरूरी। महिलाओं को बचत, बैंकिंग और निवेश की जानकारी होना भी जरूरी है। वित्तीय जागरूकता उन्हें आर्थिक रूप से और मजबूत बनाती है। परिवार और समाज का सहयोग। यदि परिवार महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर देगा तो समाज तेजी से प्रगति करेगा। महिलाओं को केवल जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि उनके सपनों को भी महत्व देना चाहिए। प्रेरक संदेश। दोस्तों, हर महिला में कुछ नया करने की क्षमता होती है। जरूरत है सही अवसर, प्रशिक्षण और आत्मविश्वास की। यदि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों मजबूत होंगे। धन्यवाद।

नमस्कार श्रोताओं, मैं श्रेया भारद्वाज गंगापुर सिटी से। आप सब सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 पर हमारा विशेष कार्यक्रम बेटियों की शिक्षा का महत्व, शिक्षित बेटी उज्जवल भविष्य। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो समाज के विकास और देश की प्रगति से सीधा जुड़ा हुआ है। आज का विषय है बेटियों की शिक्षा का महत्व। दोस्तों,

0: कहा जाता है कि यदि आप एक बेटे को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि आप एक बेटी को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। यह बात केवल कहने भर की नहीं है बल्कि समाज की सच्चाई है। हमारे देश में समय के साथ बहुत बदलाव आया है। आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति, सेना, प्रशासन और व्यापार तक। लेकिन इसके बावजूद आज भी कई जगहों पर बेटियों की शिक्षा को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती जितनी बेटों को दी जाती है। कुछ परिवारों में अब भी यह सोच मौजूद है कि बेटियां केवल घर संभालने के लिए होती है। यही सोच बेटियों के सपनों को सीमित कर देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, चाहे वह बेटा हो या बेटी। शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा केवल पढ़ना, लिखना या सीखने का माध्यम नहीं है। शिक्षा इंसान को सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। एक शिक्षित बेटी अपने अधिकारों को समझती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकती है और समाज में आत्मविश्वास के साथ जीवन जीती है। शिक्षा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाती है। जब लड़की शिक्षित होती है तो वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और अपने जीवन के फैसले खुद लेने की क्षमता रखती है। बदलती सोच और समाज। आज समाज बदल रहा है। लोग समझने लगे हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं है। हमने देखा कि बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, पुलिस अधिकारी और सेना में भी देश का नाम रोशन कर रही है। यह सब संभव हुआ है शिक्षा की वजह से। ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियाँ। हालांकि शहरों में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कई चुनौतियां मौजूद है। कई लड़कियां स्कूल इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होता है। कुछ जगहों पर सुरक्षा और सामाजिक सोच भी बड़ी बाधा बनती है। कई बार छोटी उम्र में बेटियों की शादी कर दी जाती है जिससे उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। और हमें यह समझना होगा कि बाल विवाह किसी भी लड़की के भविष्य को सीमित कर देता है। सरकार की पहल। सरकार ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और साइकिल जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है ताकि बेटियां स्कूल जा सके। माता पिता की भूमिका।
1: भाइयों बहनों कृपया ध्यान दे, कालिया आ रहा है।

0: और साइकिल जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है ताकि बेटियां स्कूल जा सके। माता पिता की भूमिका। बेटियों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि माता पिता अपनी बेटी पर विश्वास करे और उसे आगे बढ़ने का अवसर दे तो वह निश्चित रूप से सफलता हासिल कर सकती है। हमें बेटियों को यह महसूस कराना होगा कि वे परिवार पर बोझ नहीं बल्कि परिवार की ताकत है। शिक्षा और आत्मविश्वास। शिक्षा बेटियों में आत्मविश्वास पैदा करती है। एक शिक्षित लड़की गलत और सही में फर्क समझती है, वह अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकती है। शिक्षा महिलाओं को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़ा होने की ताकत देती है। समाज में बदलाव की जरूरत। दोस्तों, केवल सरकार की योजनाओं से बदलाव नहीं आएगा, समाज की सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि यदि बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। हमें लड़का और लड़की में भेदभाव खत्म करना होगा। प्रेरणादायक उदाहरण। आज देश की कई बेटियां दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही है। खेलों में, विज्ञान में, राजनीति में, शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों ने साबित कर दिया कि अवसर मिलने पर वे किसी से पीछे नहीं रहती। धन्यवाद।
1: रेडियो डीएस सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
6: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
7: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।
8: डीएस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।

0: दोस्तों दोपहर के 2 बज चुके हैं और आपका जू सफर कर रहे थे नए तराने कार्यक्रम का, कुछ नए गाने और कुछ चटपटी बातों के साथ। इस कार्यक्रम को यहीं विदा देने का समय हो चुका है। आपके ऋषि मीना के साथ नमस्कार। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के साथ। आप थोड़ी ही देर में हाजिर रहेंगे कार्यक्रम भूली बिसरी यादों के साथ। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीच में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीच में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: एमबीबीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: दोस्तों 2:17 का समय हो चुका है। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के साथ आप सुन रहे हैं भूली विसरी यादें कार्यक्रम ओनली ऑन रेडियो डीएस से।

0: बीच में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: DS साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

कुछ तो भी आपने सुने लगातार भूली बिसरी यादें और बैक टू बैक गानों का ये कार्यक्रम। दोस्तों फिलहाल आप टून कर रहे 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे राजस्थानी कार्यक्रम, कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: मैं तो मर गयो।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार
0: जी। जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका। हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: तुलसीराम जी पीलूखेड़ा से, बताएं आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आप।
1: हुई शाम उनका ख्याल आ गया,
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 5 4 3 2 1 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: राणा जी खबर पक्को है। वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी की धरती। रेडियो डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

संत कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करते हुए उस फंदे के पास आ पहुंचे और हिरण का पांव उस फंदे में फंस गया। जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्ज करे।

होए, तू तो कूद जंगल में रिड़ जा, हरी करे सो होए। हे प्यारी, जो भगवान ने लिखा है वही होगा। तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पांव पर खड़ी मृगली हरिसु हेत लगाए, और हरी रोज सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी की धड़कन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वर 89.6।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

आपने सुना भजन संध्या कार्यक्रम रेडियो डीएस से। दोस्तों मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का।